0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके

0: अस्तित्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has become the longest serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister of the country. The world leaders hailed Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anura Kumar Dissanayake, in a letter said that Prime Minister Modi's vision has inspired many beyond India's borders, including Sri Lanka. Prime Minister of Papua New Guinea, James Marape, in a personal video message, described Prime Minister Modi as a role model and an example of leadership.
2: Hello and greetings from Papua New Guinea to my friend Prime Minister Modi. Congratulations on reaching a historic milestone, the longest continuous Prime Minister of the great country of India. You have now surpassed the record as the longest serving Prime Minister of India. India remains a friend of Papua New Guinea. You personally have come here. I give respect to you as a senior leader of the

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि यह उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय

0: लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026 जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार

0: चार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
2: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: ऐकूप्यानो, तुम्ही ऐकत आहात चित्रसंगीत ही हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ। ऐकूप्यानो, स्वभावात मोग, तोंडार हासो आणि काळजात आनंद दौरात जीवित खूप सोबीत जातले। ऐकूप्यानो, आता ऐकूया आक्रोश ह्या फिल्मातले गीत, श्रेया घोषाल हांचो आवाज, प्रीतम हांचे संगीत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रूपये की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रूकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है।

0: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ३३३ अंश एक मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता। 10:05 आणि 10 सेकंद झाले असत। ऐकूया कातारांची कार्यावळ। सुरवेक ऐकूया लॉर्ना गायता गोवा कॅनडा।

0: हरिप्रसाद चौरासिया हांच्या बासुरी वादनान तुम्ही आयकली मिश्र खमाज धून. या वांगडा हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ इतल्यान सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 11 वरांचेर आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. श्री मोदी का निरंतर

0: कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दोनशे 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता। 11 वर जावन 5 मिनटां आनी 7 सेकंद जाल्यात। गातार हे मेरा दिल कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। आयकुप्यानो, पावसाचे हे सुंदर दीस मनाक एक नवी उमेद दिता। पावसाचे हे खोस हाडपी वाता

0: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना लोगों के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कानरावळ्या कार्यावळीत या खिणाक घेऊया लहानसोच विसव.
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू. दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन. वेटर ने फेंका स्पिन. 4,000 का आया बिल. रोहन का धड़का जोर से दिल. वो अपना वॉलेट गया था भू.

0: कूल रिया ने किया डिजिटल पेमेंट बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: कानळवळा कार्यक्रम तुमका परतून एकदा येऊ काय ऐकूया फुडल्या कथा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक

0: प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री

0: मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको

0: एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिस से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलैम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान

0: ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोनशे 33.1 मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता। आयकुप्यानो, 2 वरां जावन 30 मिनटां आनी 12 सेकंद जाल्यात। चित्रसंगीत कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। सुरवेक आयकुया बदतमीज या फिल्मातले गीत सुमन कल्याणपूर हांच्या आवाजात, शंकर जयकिशन हांचे संगीत आणि हसरत जयपुरी हांची

0: तलाश या फिल्मातले गीत तुम्ही ऐकले सोना मोहापात्रा आणि रवींद्र उपाध्याय यांच्या आवाजात. संगीतकार राम संपत आणि गीतकार जावेद अख्तर. या गीतावांगडा चित्रसंगीत कार्यावळ इथल्यान सोपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आम्ही उलयता. 3 वरांचेर आम्ही दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता हिंदीतल्यान खबरो. 3 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो. आणि 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर मुखेल खबरो.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर बधाई दी है. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई. श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को मंजूरी दी है.
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा. बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है. इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा. इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा. लोकेशन ये मैप में है सारा. 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है. कई विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी. इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं सहित एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी. ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास अमरीकी हमलों के जवाब में आज जॉर्डन में एक अमरीकी अड्डे और खाड़ी में 21 अन्य ठिकानों पर हमले किए. ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप और सिरिक बंदरगाह शहर पर हमला किया गया.

0: इस बीच जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने ईरान से अल अजरा की और दागी गई 5 मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद ये बड़ी झड़प है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत ने वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। अफगानिस्तान के कुनार खोस और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दमन के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet today passes a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions. Mr. Vaishnaw said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad-Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. President Draupadi Murmu has congratulated Prime Minister Narendra Modi on serving as the longest continuously elected Prime Minister of the country. In a social media post, the President said that this landmark occasion stands as a testament to the enduring trust and confidence reposed in his leadership by the people of the country. She highlighted that his tenure has been distinguished by far-reaching advancements across governance, economic resilience and social transformation. She said of the many initiatives undertaken under his leadership, PM Janman and Dharti Aava Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan hold a special place in her heart. The President said Mr. Modi's inspiring journey continues to instill hope and renewed confidence in India's strong democratic traditions. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri today said that there is no shortage of compressed natural gas in the country. He said the government is expanding the supply of piped natural gas to households and efforts are being made to convert LPG connections to PNG connections.
2: Global situation ka fayda uthake
3: taking advantage of the current global situation, some individuals have attempted to create artificial shortages. However, I would like to clarify there is no shortage of CNG or piped natural gas. In fact, efforts are underway to reduce dependence on LPG by promoting the wider use of PNG.
2: Convert kar rahe hain into PNG connection.

0: आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभराए, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभराए। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मोगळ ऐकूपेनो आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वेल्यान आम्ही उलयतात बरोबर सांजेची 6 वरां जावन 5 मिनटां आणि 9 सेकंद जातात।

स्वच्छ भारत घडयतना स्वच्छ मनान स्वच्छ काळजान भौशीक स्वच्छताय राखुया, आरोग्यवान रावुया। स्वच्छता ही सेवा।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली

0: बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए

0: राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
3: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
2: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान

0: शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
2: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले

0: 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ही कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी ही थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व

0: प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिये, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफें

0: एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हुई। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी छोटे से दुकान में भी यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें

0: ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहां पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड एग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी एग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, तो पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी। देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है। मतलब यदि कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है। इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई भी बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि,

0: आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भारत, सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही

0: पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: श्रोते हो, नुकतंच आपण ऐकलत नाटक आदित्य चक्षु। यात भाग घेणारे कलाकार नारद विष्णू सूर्यवाघ, याज्ञवल्क्य व्यंकटेश नाईक, शाकल्य विश्वजीत फडते, जनक दिगंबर नाईक, आर्तभाग प्रताप नाईक, कहोल सुरेंद्र कलंगुटकर, गार्गी वृंदा नाईक, भरजू प्रीतम नाईक, उद्धालक बाळकृष्ण मराठे, अष्टवक्र जय हळदणकर। पार्श्वसंगीत होतं पांडुरंग नाईक यांचं, लेखन विष्णू सूर्यवाघ। आणि आकाशवाणी पणजी केंद्रासाठी हे नाटक सादर केलं होतं साईश देशपांडे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है।

0: इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail project covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh.